0: ଆଉ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, କାରଣ ପାଣି ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।

तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

व्यास विरचित श्रीमद् भागवत सकाळ 6:45 हवाक जा संवाद केन्द्र एवं परे परे

नगर उन्नयन विभाग तरफ हेबार के थिबा ई कार्यक्रम जरी राज्य नागरिक संपर्क के बरकस करबार शहरी विकास और सफलता प्रदर्शन आउ जनभागीदारी के बढ़ावार लक्ष्य रखा जाइछे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पूरी टाउन हॉल थाने विभागीय मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्रक उपस्थिति हेबा राज्य सब महानगर निगम पौरपालिका आउ एनएससी मानके ई कार्यक्रम करा जिबा विकसित ओडिसा लागि जनभागीदारी सशक्त नागरिक समावेशी शहर स्थायी सहरांचल विषयवस्तु उपरे आधारित ई अभियान थी पीबार पान परिमल घर परिवहन आउ डिजिटल शासन क्षेत्र अग्रगति प्रदर्शित हेबा जहाज निर्माण क्षेत्र थी गुटे नुआ नजरिया सहते भारत आगे बढ़ुचे बोली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन। पश्चिमबंग कोलकाता ठाने गलाकाल स्वदेशी ज्ञानकौशल तीन टा युद्ध जहाज के नौसेना थी सामिल करबार

0: छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजिलॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित संदेशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: कार्यक्रमर सूचना आधारित कार्यक्रम स्वच्छ जीवन पुरातन शुणी केतोटी ओडिसी गीत सतटा बाजि 45 मिनिट्रे कार्यक्रम प्रसारित हेब सकाळ 8:30 मिनिट्रे 45 मिनिट्रे सुनिपरिबे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत वैदेही सबिलासर संगीतात्मक परिवेषण प्रचार करिबु सकाळ 9:00 एवं दिन 2:45 मिनिट्रे रहिछि सकाळ 9:30 मिनिट्रे खोला छड़का प्रचार करिबु 10 मिनिट्रे 30 मिनिट्रे कार्यक्रम शक्ति रूप प्रचार करिबु दिन 10 कटक केन्द्ररु साहित्यायन मिनिट्रे राति 7:25 मिनिट्रे भर हालचाल प्रचार करिबु केन्द्ररु 7:30 मिनिट्रे राति 8:00 गीत गाजल 8:15 मिनिट्रे स्पोर्ट्स गान राति 8:30 मिनिट्रे स्पॉटलाइट राति 9:15 मिनिट्रे राति 9:30 मिनिट्रे पब्लिक स्पीक जगन्नाथ चंद्र राय महापात्र प्रयोजना रवींद्र कुमार दास संगीत क्रम शुणी शास्त्रीय गायन द्वादश वर्ष कार्यकाल पूर्ति अवसर कार्यक्रम कार्यक्रमर सूचना स्वास्थ्य एवं केन्द्ररू

ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया और उन्हें विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र काम कर रहे हैं। राम एक है, क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। मांगा है वो दे, नहीं तो नाम करके अपयश के भागी बने। सभी धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे उमड़ी हो। दो नदी के दो किनारे हैं, कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और वो नदी दहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। कि स्त्री मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, पकड़कर विनती की कि वो सूर्य रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम उन्हें न मारें। कि व्यर्थ हुई, मान लिया कि रोग असाध्य है, से हाथ कर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा।

0: दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद

0: कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात

सीता धिक्कार करि रावण को कहिबारु रावण निज मूर्ति धरी सीता बल प्रयोग करि नेबाकु बाहरिला बोली पूर्व भाग रे वर्णना करा जायछि। ए भाग आरंभरु भंज कवि कहिले जे रावण रे मंद उद्देश्य जानिपारि सीता बर ही अंतरे बा अग्निर भितरे गुप्ता होइगले। वाल्मीकि बा बलराम दासंकर रामायण रे रावण नै जिबा पूर्वरु सीता अग्नि रे लुचि जिबा कथा नाही। ए कथा प्रथम थर पय आसिला अध्यात्म रामायण रे। तुलसी रामायण रे लक्ष्मणंकर अनुपस्थिति रे राम सीतांकु कहउछंती एबे मु मणिशंक भली लीला करिबी तुमे अग्नि रे लुचि जाओ। वैदेहिस विलास रे दर्शागला जे रावण स्पर्श करिबा उद्यम करिबा मात्रे सीता अग्नि रे लुचि गले। तांकु न देखि लंकेश भाविला ए वेदमती भली हला। पूर्वरु रावण स्पर्श करिबारु वेदमती अग्नि रे झास दे जीवन हारिथिले किंतु सीता पुणि व्यक्त होई दिसिबारु रावण बळे धरी अंगन बा अगणा को आणिला। बात सरित स्थिर होइगले पाषाण तरली गला बोली वर्णना कले भंज कवि। रथरे बंदी भली सीतांकु रखी मध्य बंदी बा भाट भली मने मने भक्ति रे स्तुति करि रावण रथ चालिला। एहा सुनी जटायु तरकिला बा चमकी पड़िला। सुराप अर्थात मद्यप हाथ में वेदपोथि किए देला कही चंचु पक्ष रे विमान भांगिला बेले रावण बाम हाथ में सीतांकु धरी दक्षिण हाथ में जटायुर पक्ष छेदन कला। ऋष्यमुख पर्वत रे सुग्रीव प्रभृति को देखि बसन रे अलंकार रखी कृपानिधि राम पाइबे भावी सीता पकाई देले। रावण अशोक वन में पहुंची सीतांकु समर्पा राक्षसी को समर्पि दे त्रिजटा को सखी कराइला। नारदंक हाथ में विधाता अमृत पठेले ओ असुरी मानंकु विमोहित करी कहिले एहा द्वारा क्षुधा तृषा हेबो नाही। एठी शेष होउछि काव्यर 24 छंद।

0: दोपहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: मन रहीगला सात सुरे कथचित्र शुणु विष्णु कवि कंठरे दिलीप जेना रचना को संगीत सजाई बप्पी लेहरी कथचित्र मन रहीगला सात सुरे।

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: আচ্ছা দাসবাবু, আপনার ঘরটা 1970 রে তৈরি হইতা, রাইট? তাহলে এই পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমনে আছে?
1: আরে এটা একদম সিম্পল, এবং সেইথিপাই মু সেতবেলে মোর বিশ্বাস রাখিলি এবং আজি মধ্যে চেটিনাড সিমেন্ট উপরে
2: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নহে বরং পিঢ়ি পাই রহি থাকে। চেটিনাড সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া। চেটিনাড সিমেন্ট, দ্য পারফেক্ট কংক্রিট চয়েস।
0: আচ্ছা দাসবাবু, আপনার ঘরটা 1970 রে তৈরি হইতা, রাইট? তাহলে এই পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমনে আছে?
1: আরে এটা একদম সিম্পল, এবং সেইথিপাই মু সেতবেলে মোর বিশ্বাস রাখিলি এবং আজি মধ্যে চেটিনাড সিমেন্ট উপরে
2: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নহে বরং পিঢ়ি পাই রহি থাকে। চেটিনাড সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া। চেটিনাড সিমেন্ট, দ্য পারফেক্ট কংক্রিট চয়েস।
3: প্রচার করল সুগম সঙ্গীত আকাশবাণী ভবানীপাটন। সময় বর্তমান দিন গোটাই হওয়া যাচ্ছে। প্রথমে শুণন্তু হিন্দিরে এবং পরপর ইংরাজী সংবাদ রিলে করে প্রচার করছ আকাশবাণী দিল্লির।
4: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य

0: परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुन चा नियो। अरे चा नियो मो।
2: देलो।
1: कौन एमिति गणी पकौच जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काई की आम रेडियोटा अन कलानी। मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानीपाटणा ट्यून कर। प्रत्येक दिन सकाळ 10:10 रु 11:10 जाए स्थानीय खबर आउ मनपसंदर गीत कुनी कार्यक्रम खोर

0: वर्क फ्रॉम होम हाय सैलरी मात्र गोटिए क्लिक रे
1: अरे वाह
2: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
3: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु
4: अच्छा दासबाबु आपनको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
5: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेल्फी पाई मु सतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस

रूस, साउदी आरब, दक्षिण आफ्रिका एवं यूनाइटेड आरब एमिरेट्स। सम्मेलनी रे आजिरो विश्वरे देखा देउथिबा अणपारंपरिक सुरक्षा आह्वानगुड़िक विषय रे आलोचना करा जाई एहाकु प्रतिहत करिबा दिगरे नूतन प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार संपर्क रे आलोकपात करा जिवो। विभिन्न देशर प्रतिनिधिमाने साइबर सुरक्षा, डिजिटल आह्वान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिचालित आह्वानगुड़िक उपरे विस्तृत भावे मत विनिमय करिवे। किछि दिन पूर्वरु ब्रिक्स जुग्म कार्यकारी गोष्ठी पक्षरु आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सम्बन्धीय आलोचना पृष्ठभूमि रे ग्रहण करा जाइथिबा प्रसंगगुड़िक नै मत विनिमय करिवार कार्यक्रम रहिछि। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दुईदिनिया मंगोलिया गस्तरे जाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे डॉक्टर जयशंकर भारत और मंगोलिया मध्यरे स्वतंत्र रणनैतिक भागीदारीता वृद्धि नै आशा व्यक्त करिछन्ति। एही गस्त कालरे वैदेशिक व्यापार मंत्री मंगोलियार नेतृत्वक सह आलोचना करिवे और तांको प्रतिपक्षक सह विभिन्न प्रसंग नै बैठक करिवार कार्यक्रम रहिछि। गस्तर द्वितीय पर्यायर बुधवार एवं गुरुवार दिन वैदेशिक व्यापार मंत्री दक्षिण कोरिया जीवार कार्यक्रम रही। गस्त काल में डॉक्टर जयशंकर दक्षिण कोरिया वैदेशिक मंत्री चो युंग द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। सेठारे जेजु सम्मेलन शांति एवं प्रगति संपर्कित प्रसंग उपरे डॉक्टर जयशंकर उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। कतार एक प्राकृतिक गैस रप्तानी भित्तिभूमि स्थल में विस्फोरण घटी 54 जन गुरुतर आहत होता बेले 18 जन निखोज अछन्ति। सूचना अनुजाई गत राति सेठाकार एक गैस रप्तानी शिल्पांचल विस्फोरण घटी फल संप्रक्त गैस जोगाण केन्द्र में भयावह अग्निकाण्ड सृष्टि होता। क्षयक्षतिर परिमाण एपर्यंत आकलन करिबा संभव होइनथिला बेले प्रकृत आहतंक संख्या परे जनापड़िबो बोली सेठाकार आभ्यंतरण मंत्रालय पक्षरु कुहाजाइछि। विस्फोरणर कारण जानिबा लागि तदंत आरंभ होइछि। घटनास्थल रे निखोज लोकमानंकु ठाब करिबा लागि युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रहिछि। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणीरु। अमेरिका ओ ईरान मध्यरे स्विट्जरलैंडरे द्विपाक्षिक शांति आलोचना शेष हेबा परे तैल जोगाण प्रतिबंधक दूर हो ईरान तैल रप्तानी वृद्धि पाइबा आशा करा। तबे अशोधित तैल मूल्य इतिमध्यरे 3% पर्यंत ह्रास पाई। आंतर्जातिक बजार में अशोधित तैल मूल्य 2% अधिक ह्रास पाई बैरल पिछा $79 पाखापाखी होई। अमेरिका एवं ईरान वरिष्ठ अधिकारी प्रथम पर्याय आलोचना शेष होगा नहीं घोषणा करने पर पश्चिम एशिया अंचल युद्ध विरती समय सीमा वृद्धि पाइबा नहीं आशा प्रकाश पाई। झारखंड में गत 24 घंटा मध्य वज्रपात 8 जनकर मृत्यु होता बेले 12 अधिक आहत होती। झारखंड रामगढ़, गिरिद, खुंटी, देवघर, धानबाद एवं साहिबबाग जिले में वज्रपात घटी लोकमाने आहत होता जमापड़ी। एथिरे जने सीपीआई नेता, जने वार्ड मेंबर और कृषकों समेत अन्य केतेजणंकर मृत्यु घटी। प्रशासन पक्षरु वज्रपात समय घर बाहर को न जीवा लगी परामर्श दिया जाइछि। विशेषकर चाष जमी एवं खोला जगह को न जीवा लगी प्रशासन पक्षरु कुहा जाइछि। आकाशवाणी द्विभाषिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रे आज राति 9:30 युव पीढ़ी निजुक्ति सुजोग प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शीर्षक आलोचनार प्रचार करा। कर्मचारी भविष्यनिधि पांठिर अतिरिक्त केन्द्रीय कमिशनर पूर्णेन्दु भूषण वर्मा आलोचन अंशग्रहण करिबे। कार्यक्रम समय श्रोता प्रश्न पचारिपर एमंक 0111-7117-2331-4-4-2331-0481-2371-06 नंबर को डायल करने को हेबो। यह व्यतीत श्रोता मैंने 9289-09-4044 नंबर को ह्वाट्सअप एवं सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे हैशटैग आस्क एआर माध्यम रे प्रश्न पचारि परिबे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ख्यातनामा कृषि वैज्ञानिक एवं पद्मभूषण विजेता सर्दारा सिंह जोहल को लुधियाना रे साक्षात करी कृषि संबंधी आह्वान गुड़िक संपर्क में आलोचना करिछन्ति। श्री नवीन कहिछन्ति कृषि क्षेत्र में अनन्य अवदान देइथिबा जोहल आलोचना करी।

0: was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु

0: के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में

0: सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद ता पूर्वर एक विज्ञापन।
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक थारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: आधारे सहायता राशि परिमाण मध्य वृद्धि पाइब। 30 वर्ष कार्य करथिबा आईनजीवी को अवसर किंबा परलोक क्षेत्र में सर्वाधिक 6,30,000 टंका सहायता राशि प्रदान व्यवस्था रही। 2021 मसीह सहायता राशि परिमाण को वृद्धि करा। रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर में घटी भिड़ हिंसा अत्यंत दुखद बोली महिला विरोधी अपराध शाखा अतिरिक्त महानिर्देशक एस सैनी कहते। घटना तदंत जिला पुलिस जारी रखी। पीड़िता को राज्य सरकार पक्ष समस्त प्रकार सहायता जगै दीजिए। दोषी को दंड और आगामी दिन में यह घटना पुनरावृत्ति नाई पदक्षेप निजी एडीजी एस सैनी कहते।
1: रायगढ़ रे कल्याण सिंहपुर रे है जी सेटा सीएडब्ल्यू एंड सीएडब्ल्यू रेड फ्लैग हिसाब रे ट्वीट करा जाई छी और एक केस रे फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट वर अवेलेबल टू अस हमें ऑलरेडी इश्यू करी छु और हमरे इन्वेस्टिगेशन के मदी भला भाव रे हो से एंगल रे हमें केसटा हम ऑफिस रे विमेन सेक्शन मॉनिटरिंग करबो और रेड फ्लैग सेक्शन मॉनिटरिंग करबो। ट्रायल स्टेज रे भी मॉनिटरिंग करके केमदी ए जो दोषी को दंड दिया जबो तार सब स्टेप्स निया जबो।
0: सूचनाजोग्य घटना को रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करा जाई। ए साइनिंग का नेतृत्व में एक दल रायगढ़ जाई तदंत आरंभ करिछंती। आवश्यक पड़िले एही दल दिल्ली जाई तदंत करिवो बोली जाना पड़िछि। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आसंता काली पूरी टाउन हॉल सम्मेलनी कक्ष में पूर्वाह्न 11 समय द्वितीय समन्वय बैठक आईनमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार अनुष्ठित हो। बैठक में रथयात्रा समय महाप्रभु नीतिकांति परिमल व्यवस्था स्वास्थ्य आलोकीकरण रास्ताघाट मरामति पानी जल जोगाण गमनागमन सुविधा सुरक्षा और ट्राफिक नियंत्रण नहीं आलोचना। रथयात्रा पूर्व राज्य सरकार समस्त विभाग कार्य अग्रगति नहीं आईनमंत्री समीक्षा करेंगे। विभिन्न विभाग अधिकारी सेवायत एवं बुद्धिजीवी माने एथिरे उपस्थित रहिबे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा बदली पहाड़ निकट विभिन्न माओ सामग्री जबत कर आत्मसमर्पण करओवादी सूचना आधार में यह सामग्रीगुड़ जबत कर आरक्षी अधीक्षक रोहित वर्मा कहते। जबत सामग्री मध्य बंधुक क्लामर माइन टीफिन बोमा और माओ पुस्तिका आदि रही। ग्रामांचल सहरांचल विद्यालयगुड़िकर आधुनिक डिजिटल शिक्षार प्रसार नहीं भद्रक जिले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं नवसृजन दक्षता केन्द्र शुभारंभ हो। कार्यक्रम में सांसद अभिमन्यु सेठी विधायक सीतांशु शेखर महापात्र जिलापाल दिलीप राउतराय प्रमुख उपस्थित थे। भद्रक जिला धामनगर पंचायत समिति कार्यालय में राज्य सरकार विकासधारा ओडिशा सारा संपर्कित कर्मशाला अनुष्ठित हो। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज कार्यक्रम में जोगद केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजना संपर्क में आलोचना कर। पाणिपाग उत्तर बंगोपसागर में आसंता 15 दिन मध्य दुईट लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुजाई दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आज बलांगीर सुंदरगढ़ मध्य अग्रसर होउछि। आगामी दिन में मौसुमी प्रभाव में राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं प्राय समस्त जिला को सतर्क सूचना जारी करा। समय मध्य समुद्र अशांत रहुथिबार मत्स्यजीवी को आसंता काली पर्यंत समुद्र मध्य को नजीबा पाई परामर्श दिया जाएगी। मुख्य संवाद गुड़िक पुणि थरे तमिलनाडु गैस लीक घटन ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 5 को वृद्धि। तिरुभल्लुर परिस्थितिर अनुधान करुछन्ते राज्य सरकार का 3 वरिष्ठ अधिकारी। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार प्राक मौसुमी प्रस्तुति ने अपराह्नरे हेबो बैठक। राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग अभियोग नहीं आगत आवेदन को खारज कले विधानसभा बाचस्पति। आम भितर जंगलर बार्ता नहीं आज पालन विश्व वर्षावन दिवस और बंगोपसगर में आसंता 15 दिन मध्य दुईट लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। मत्स्यजीवी को आसंता काली पर्यंत समुद्र को नजीबा परामर्श। आंचलिक संवाद बर्तमान शेष परवर्त आंचलिक।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनबीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थी और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन के इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया

इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर

सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी भवानीपाटना प्रचार करुछु। युव श्रोता बंधु मानक उद्दिष्ट कार्यक्रम।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଯୁବବାଣୀ କ୍ରମରେ ସାହିତ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହଲ୍ରେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଓ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत

0: फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हालचाल क्रमरे शुणिबे भद्रक जिल्ला संपर्करे एही कार्यक्रम द्वय रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु चासबास कार्यक्रम प्रचार करिबो राती 7:30 रे राती 8:00 शुणिबे गीत गजल कार्यक्रम शिल्पी माने हेले जगजीत सिंह गुलाम अली एवं तलत अजीज संबलपुरी गीत प्रचार करिबो राती 8:15 रे शिल्पी माने हेले विभूति भूषण पटनायक ओ कृष्णा पटेल स्पोर्ट्स कैन राती 8:30 रे राति 9:15 रे स्पॉटलाइट एवं 9:30 रे पब्लिक स्पीक ए समस्त कार्यक्रम रिले करि सुनिबो आकाशवाणी दिल्ली रु राति 11:10 रे केंद्र सरकारक द्वादश वर्ष पूर्ति अवसर रे विशेष कार्यक्रम रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली रु पंडित सियाराम तिवारी को शास्त्रीय गायन प्रचार करिबो राति 10:30 रे एवं राति 10:00 रे शुणिबे नाटक भक्त वत्सल जगन्नाथ।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमबंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः सन्ति घोषिताः। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्यां अद्य ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातॄणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वकीय

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: ଅପା ଦେଖ,
2: ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ।
1: ଦେଖ ବା, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କଲର
3: ସବୁବେଳେ ସପିଂ।
1: ଆଇ ନୋ ମା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବୟସ ଏଇଟା, ରାଇଟ?
4: ସେଭିଂ କରିବାର ବି ବୟସ ଏଇଟା।
5: ଆଇ ନୋ ବାପା, ସେଭ୍ କର, ଉଚିତ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କର, ମୂଳଧନ ଉପରେ ସୁଧ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ସୁଧ ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଆଇ ନୋ ନା। RBI କହେ,
6: କର ସଠିକ ଆରମ୍ଭ, ହୁଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସ୍ମାର୍ଟ।
7: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
9: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहंतु।
10: अंशुघात लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाड़ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिशिबा ओ बांती लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
9: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळे किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु, बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु, हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जत्ता व्यवहार करंतु, खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
10: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ थंडा जगा को नेई ORS किंबा चीनी लुण सरबत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़ी को जथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु, रोगी को पंखा, कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
9: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
10: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन संपा राय जुहार। पहला मुख्य खबर, नुआ दिल्ली न आइबा काल दुई नंबर खेप पद्म पुरस्कार प्रदान करबे राष्ट्रपति। तमिलनाडु गैस लीक घटनाती ओडिया श्रमिकों संख्या बढ़ला पांच के। तिरुवल्लुर न परिस्थिति अनुध्यान करुछन तीन जन वरिष्ठ अधिकारी। ओकिल मानकर कल्याण पांठिनु मिलुथिबार साहस टंका के 40% बढ़ाले राज्य सरकार। आउर 2026-27 शिक्षा वर्ष लागि स्नातक पाठ्यक्रम थी ना लेखार बाहरला पहला मेधा तालिका। एथरा पूरा खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आइबा काल नुआ दिल्ली न दुई नंबर खेप बेसामरिक सम्मान समारोह ती इ बछर लागि 65 जन विशिष्ट व्यक्ति विशेष को पद्म पुरस्कार प्रदान करबे। इ बछर मोट 131 जन को पद्म पुरस्कार देबा लागि अनुमोदन मिलिछे। इथि 5टा पद्म विभूषण 13टा पद्मभूषण आउ 113टा पद्मश्री पुरस्कार रहिछे। पहला खेप बेसामरिक सम्मान प्रदान समारोह ती गला मासे राष्ट्रपति 66 जन को पद्म पुरस्कार थी सम्मानित करिथिले। ओडिशार चरण हेम्रम, सीमांचल पात्र, शरत कुमार पात्र को पद्मश्री सम्मान थी सम्मानित करा जिबा। तमिलनाडुर तिरुवल्लुर ठाने हेतिबार एमोनिया गैस लीक घटनाती ओडिया श्रमिक मानकर मृत्यु संख्या पांच के बढ़िछे बोली श्रम मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया सूचना देछन। दुर्घटना थी 70 अधिका लोक अस्वस्थ होकरी मेडिकल न चिकित्सित होछन। घटना थी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करबार सहित मृतक मानकर परिवार रो लुकर लागि रिलीफ पांठनु 4,00,000 टंका लेखा साहज घोषणा करिछन। राज्य सरकारकर तीन जन वरिष्ठ अधिकारी घटना जगान पहुंची करी तथ्य ठोल करुछन। तमिलनाडुर प्रशासन सांगे तालमेल रखिकरी घटना थी प्रभावित ओडिया श्रमिक मानकु सब प्रकार सहयोग देबारके अधिकारी मानकु कुहा जाइछे। मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ मिलिथिबार सूचना अनुसार दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक मानकर साहज लागि ओडिशा सरकार तमिलनाडु प्रशासन सांगे निरंतर जोगाजोग थी अछन। मुख्यमंत्री निर्देश दी मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग तमिलनाडु मुख्य शासन सचिव सांगे आलोचना करिछन। तमिलनाडु मुख्यमंत्री श्री सी जोसेफ विजय निर्देश दी गोटे तीन जनिया तदंत कमिटी गठन करा शिल्प सुरक्षा और स्वास्थ्य निर्देशक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव आ जनसंख्या विभाग अतिरिक्त निर्देशक रही। एमोनिया गैस लीक तदंत कर 24 घंटा भितर अंतरीण रिपोर्ट आ तीन दिन भितर चूड़ा रिपोर्ट देवारे कह। राज्यसभा निर्वाचन क्रस भोटिंग अभियोग के लेकर संप्रक्त विधायक विरोध थी आगत आवेदन के बाचस्पति सुरमा पाढ़ी खारज कर देछन। गला मार्च मासे इतवार निर्वाचन थी बीजेडी और कांग्रेस तरफ क्रस भोटिंग के लेकर बाचस्पति पासे आवेदन प्रक्रिया दाखल होता। बाचस्पति श्रीमती पाढ़ी कहिछन आवेदन पत्र मानके प्रक्रियागत भूल आउ दल परिवर्तन विरोधी आईन अनुसार जरूरी प्रमाण अभाव रही। जेन तथ्य आधार ती आवेदन सब दाखल होता से तार केनसी प्रमाण दाखल नाई करी बीजेडी तरफ 8 जन आ कांग्रेस तरफ 3 जन विधायक को अयोग्य घोषणा करबा लागि आवेदन पत्र दाखल होता। राज्यसभा निर्वाचन क्रस भोटिंग लागि बीजेडी आ कांग्रेस समर्थित स्वाधीन प्रार्थी हारी जाइथिले।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और फ्रांस का सामना इराक से होगा। अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैलिफोर्निया के फुलटन में कल से शुरू। FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया और विश्व मुक्केबाजी कप में ज्योति ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स में से एक फीफा विश्व कप से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश की ओर से सर्वाधिक

0: गोल करने के करीब पहुंच गए हैं। सलाह ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में 3-1 की जीत में अपना 68वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो अब मिस्र के मौजूदा कोच होसाम हसन के करियर रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल कम है। यह विश्व कप में उनका तीसरा गोल था। इससे पहले 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे।
1: A World Cup in which the brightest stars have shone. Damanich first time. Egypt secured their first ever win at the World Cup. And they do so by beating New Zealand by 3-1.
0: प्रतियोगिता में पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्डे का शानदार सफर जारी है। ग्रुप एच में काबो वर्डे ने 2 बार की चैंपियन उरुग्वे के साथ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ किया। इससे पहले काबो वर्डे ने स्पेन को भी अपने पहले मैच में ड्रॉ पर रोका था। लगातार दूसरे ड्रॉ के साथ ही काबो वर्डे ने टूर्नामेंट में दूसरा अंक भी हासिल कर लिया है और टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही काबो वर्डे का दबदबा देखने को मिला। टीम ने मैच के 21वें मिनट में उरुग्वे के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई। टेल्मो अरकाजो की फ्री किक को केविन पिना ने शानदार गोल में तब्दील किया। यह काबो वर्डे का विश्व कप इतिहास का पहला गोल भी रहा। हाफ टाइम से पहले ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उरुग्वे की ओर से मैच का पहला गोल मैक्सी अरुजो ने किया। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे ने मैच में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। टीम के लिए दूसरा गोल अगस्टन केनोबियो ने किया। काबो वर्डे के लिए 60वें मिनट में फरेला ने गोल करते हुए 2-2 से स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा।
2: Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal for 2-2. Cabo Verde are level in the match.
0: ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला गोल रहे ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अभी भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम के अनुभवी मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने शुरुआती मिनट में ही लंबी दूरी से शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। इसके बाद डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रोडार्स ने मिलकर कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेरानवंद ने शानदार बचाव करते हुए बेल्जियम को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 ही रहा। निर्धारित समय के बाद मिले 5 अतिरिक्त मिनटों में भी कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ।
2: And it's an instinct, I think, just to reach out in panic. Another fine save from Barron. It's a shutout at the Los Angeles Stadium.
0: ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन की इस जीत में युवा खिलाड़ी लामिल यामल और स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल ने अहम भूमिका निभाई। यामल ने 1 गोल किया जबकि ओयारजाबल ने 2 गोल दागे। स्पेन का पहला गोल 10वें मिनट में यामल ने किया। टूर्नामेंट में यह उनका पहला गोल था। मैच के 30वें मिनट में स्पेन की बढ़त को एमेरिक लोपोर्ट ने दोगुना कर दिया। इसके सिर्फ 3 मिनट बाद स्पेन ने एक और शानदार टीम गोल किया। डेनी ओल्मो ने मौका बनाते हुए गेंद ओयारजाबल के पास की, जिन्होंने शानदार वॉली लगाकर अपना दूसरा और स्पेन के लिए मैच का तीसरा गोल किया। पहले हाफ में 3-0 की बढ़त लेने के बाद स्पेन पूरी तरह नियंत्रण में था। दूसरे हाफ में सऊदी गोलकीपर ने उनके शॉट को रोक लिया, लेकिन गेंद की दिशा सऊदी खिलाड़ी हसन अतलामबख्ती से टकराकर बदल गई और अपने ही गोल में चली गई। इसके बाद भी स्पेन ने सऊदी अरब के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और मैच को 4-0 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन के 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है।
2: Spain have 4. Any goal is to sum up the way things are going for Saudi Arabia. It is that one. But that's it.
0: Vishesh Shukla, SportsScan.
3: और अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत का दबदबा जारी है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में ये भारत का 5वां स्वर्ण पदक है। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। और अब बात मुक्केबाजी पर। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप में कल ज्योति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: ज्योति ने 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान की फरजानो फजीलोवा को 5-0 से हराया। भारत ने फाइनल में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग

0: के फाइनल में मीनाक्षी को चीन की वो यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने भी रजत पदक जीता। टूर्नामेंट में शानदार सफर के बाद भी वो अपने टाइटल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की निगीना उक्तामोवो के हाथों 0-5 से हार गयी। पुरुष वर्ग के 70 किलोग्राम में दीपक ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में दीपक को कजाकिस्तान के अबलाई खान जुसुपोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में जुगनू और निखिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए, जिससे पदकों की संख्या 6 हो गई। इनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अभियान सफल रहा। महिला टीम ने 5 मुक्केबाजों के साथ 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार नेतृत्व किया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रीति पवार, साक्षी और प्रिया ने स्वर्ण, जबकि परवीन ने रजत पदक अपने नाम किया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात माइंड गेम शतरंज पर। तमिलनाडु के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इनियान पा ने मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए 361 ग्लोबल शतरंज महोत्सव के मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: Inian Pa of Tamil Nadu, the top seed, lived up to his billing, dominating proceedings from start to finish to emerge champion in the Masters category of the 361 Global Chess Festival, which concluded at the World Trade Center in Mumbai. Already in sight of the title after the penultimate round, the composed 24-year-old national champion settled for a quick and short draw against Ajay Santosh Parvathareddy to claim one of the biggest chess titles in the country in his debut appearance and the winner's purse of ₹8 lakh. The Erode-based GM Inian amassed 7.5 points to emerge champion, maintaining an unbeaten stint, conceding only 3 draws. Boris Savchenko had to settle for a draw against Akash Sharachandra Dalvi and finished second with 6.5 points. Nitin Babu clinched the Challengers category and Madhvendra Pratap Sharma triumphed in the Junior Masters category. Both Nitin and Madhvendra have directly qualified to play the Masters category in the 10th season scheduled for next year. For SportsScan, this is S. Kishore from Mumbai.
1: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के कृष्णा नागर, तुलसीमती मुरुगेसन, नित्याश्री, सुमति सिवन और नितेश कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा ने पुरुषों के सिंगल्स SH6 फाइनल में चार्ल्स नोक्स को 21-19, 21-11 से हराया। कृष्णा ने अपने खाते में 2 कांस्य पदक भी जोड़े। महिलाओं की सिंगल्स SU5 स्पर्धा में तुलसीमती ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नित्याश्री महिलाओं की सिंगल्स SH6 स्पर्धा में विजेता बनी। वहीं नितेश कुमार ने पुरुषों के सिंगल्स SL3 स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। नवीन शिव कुमार पुरुषों के सिंगल्स SL4 स्पर्धा में उप विजेता रहे। मानसी जोशी और तुलसीमती मुरुगेसन ने महिलाओं की डबल्स SL3 SU5 स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भी मिक्स डबल्स SL3 SU5 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। भारत के कांस्य पदक विजेताओं में पुरुषों के सिंगल्स WH1 में प्रेम कुमार आले, महिलाओं के सिंगल्स WH2 में अल्फिया जेम्स, पुरुषों के सिंगल्स SL3 में प्रमोद शामिल थे। प्रमोद और सुकांत कदम ने पुरुषों के डबल्स में भी कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल्स SL4 में सूर्यकांत यादव, पुरुष सिंगल्स SU5 में रुथिक रघुपति और महिला सिंगल्स SU5 में मनीषा रामदास ने भी कांस्य पदक जीते। डबल्स WH1 WH2 स्पर्धा के महिला वर्ग में रुचि त्रिवेदी और पोलैंड नतालिया ग्रजिब ने कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में अबू हुवैद और पल्लवी कलुवेहल्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया। SL3 SU5 स्पर्धा के महिला डबल्स में संजना कुमारी और शांतिया विश्वनाथन और मिक्स्ड डबल्स में नितेश और तुलसीमती मुरुगेसन ने कांस्य पदक जीता। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से कैलिफोर्निया के फुलटन में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
4: सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान के चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल

0: सात भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और छठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षि कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेज से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात रिले चैंपियनशिप पर। चीन के शांघाई में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं के 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत और 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में भारत दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रही। अब बात हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल FIH प्रो लीग रोटरडैम लेक के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। कार्यवाहक कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी शानदार कप्तानी और मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात क्रिकेट पर। महिला आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कल भारत को 6 विकेट से हराया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 159 रन के लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेरिजन कैप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
4: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और

0: कैसे घटी भविष्य में न घटे इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों

0: के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है।

0: जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूँ। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी

0: की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी, और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले, और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
1: जी प्रणत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि EPFO बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी EPFO को सौंपा है। तो EPFO इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो EPFO के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली EPFO एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
1: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है EPFO नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
1: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
0: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
0: दो बार में दिया
1: जी जाता है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल EPFO के साथ जुड़ना पड़ता है। EPFO के साथ जुड़ने के लिए जो EPFO में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर EPF में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे EPFO से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर EPF में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने EPFO में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो EPFO में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ EPFO में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये अगर 20,000 रुपए तक की सैलरी

0: रही है 10 से 20 हजार, तो 2 हजार रुपए, और अगर 20 हजार से लेकर और 1 लाख रुपए तक की अगर सैलरी है तो 3 हजार रुपए का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है। डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है
1: जी। हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
0: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट, एक पीरियड है कि अगर अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
4: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी,
4: कर दिया कर दिया।
1: सवाल
4: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
4: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम

0: लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनेंद्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो करता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
2: अमित जी नमस्कार, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
2: अभी
4: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
6: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
6: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
2: नमस्ते
6: जी, पर मेरा सवाल है क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
2: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको

0: केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
0: और तो कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ी, 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
0: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉयी अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयी को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयी के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉयी हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा उन्होंने।
3: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट,

0: लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है, तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए।
0: जी,
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: मैं बसतपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे
1: जी मोहन जी,
2: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर।
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं,
0: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में MSME क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोज़गार सृजित करते हैं, तो देश के जो MSME क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को MSME क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से।
3: तो इसमें MSME के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली EPFO जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे MSMEs हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे MSMEs इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा।
3: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे EPFO से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा।
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो UAN जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना DBT के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही EPFO में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
4: छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे
4: जी, भारत रोजगार रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से
0: इसमें सेक्टर्स? इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी EPFO के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम EPFO के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन UAN के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी EPFO के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।

0: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है, नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
1: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
0: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि EPFO के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और EPFO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
0: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
0: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
1: कार्यक्रम रिले कर प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु आकाशवाणी भवानीपाटना प्रचार करुछु नाटक भक्त वत्सल जगन्नाथ। रचना नारायण चंद्र राय महापात्र, परिचालना रवींद्र कुमार दास।

0: ओह जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जे मोर इष्ट नुहे जे मोर आराध्य नुहे मु ताकु काहेकि डाकिबि मा
1: से समस्तिंकर आराध्य बापा सी परा जगतर नाथ सी हिंदूर मुसलमानर समस्तंकर
0: समस्तंकर मिछ तमे मिछ कथा कहि मो चित्तरे चांचल्य सृष्टि करना मा से तम ओडिया जातिर ठाकुर से जातिकु मु घृणा करे तार राजा नरसिंहदेव आमर चिरशत्रु आउ तार ठाकुर जगन्नाथ
1: सालबेग तू एक कथा कहि पारुछु ताहले ताहले मु तोर केहि नै
0: तमे छि मोर मा तमे ओडिया खरर झियो हेले भी तमे मोर जन्मदात्री तमे मोर पूज्या मा
1: ना मु तोर मा नुहि मु तोर केहि नुहि मु तोर केहि नुहि
0: मा मा छी मा तमे कांदुछु मो कसम मा तमको जगन्नाथको कसम तमे कांदना मु तम कथा मानिबि मा तमे चाहा कहिब शुणिबि
1: मानिबु मो कथा मानिबु धन
0: हाँ मा मानिबि
1: धन मोर मो सुनाटा परा जगतर नाथ अनाथर प्रभु चकडळंकु थरे डाक बापा तांकर शरण ने तांको दया हेले तू सात दिन रे भलो होइजिबु बापा
0: मा सात दिन रे तमे तमे सत कहुछ मा
1: हाँ बापा तू मन को दृढ़ कर सात दिन भितरे तू निश्चय भल होइजिबु
0: दुई बर्षर दुरारोग्य रोग मात्र सातटा दिन रे भल होइजिबु ठीक अछि मा ठीक अछि मु आजि ठारु सात दिन जगन्नाथ को डाकिबि किंतु किंतु कहितो छी मा फल नहले ना तमरी आगे मु आत्महत्या करबि
1: छी पुआ ई काल कथा पुनी तुंडेर धरुछु मो ठाकुर एते निष्ठुर नहुंती रे

0: हे प्रभु जगन्नाथ, तमें जदि सतरे जगतर नाथ, तमें जदि सतरे मो माँ को आराध्य ठाकुर, मते भल कर दियो प्रभु, मते भल कर दियो। कि कष्ट, हे कष्ट मु सही पारुनि महाबाहु, माँ को मु अबाध्य हेबिनि प्रभु, तांकर आदेश रे तमरी ना को मु छ दिन हला जपुची, हेले काई सतरे कौन मु भल हेबिने कुह प्रभु।
1: से जगन्नाथ को डाकू था पुआ, से निश्चय तते भल कर देबे।
0: मा मु पारुनी मा, काई कोठी सुनुछन्ति तम जगन्नाथ, सब मिछ, तमर उपदेश अनुसार छ दिन हला जगन्नाथ नाम जप करुछि, काई मो जंत्रणा तो दूर हलानी मा।
1: हब रे बाबू, तो कष्ट निश्चय दूर हब, तांकरी पाद पद्मरे निष्ठार सह शरण नेबी।
0: काठ पथर र जगन्नाथ कुआडे अनाथर नाथ सात दिन रे भल करिदेबे।
1: सालो बेग, तू ए कौन कहुचु पुह, तू सब कह पछे, दुख हरी जगन्नाथ को तू गाली देना पुह, ए दुनिया रे मो दुख केही न सुनिले भी से निश्चय सुनिबे, से निश्चय तो भल कर देबे बाबा।
0: केबे केबे आउ भल हेबि मा, केबे आउ भल हेबि, केबे आउ से मो डाकु सुनिबे।
1: तू धर्ज धर पुओ, आछि राती पाइले सात दिन पुरिबो, भक्त पाई भगवानंकर यहा एक कठोर परीक्षा, आछि राती पाइबा जाय तू से महामंत्र जप कर बापा, तापरे जानिबु मो ठाकुरंकर महिमा केते।
0: सत कहुछ मा, सत कहुछ, मो दुख जंत्रणा आजि शेष हेबो।
1: हाँ बापा, मन को दृढ़ कर, निज भितरु अहंकार ग्लानि आ क्रोध को त्याग करी चकाडोलांकर पाद पद्मरे आत्मसमर्पण कर, फल निश्चय मिलिब।
0: आत्मसमर्पण?
1: हाँ, यही दुर्दिन से दुख हारी तोर एकमात्र साह भरोसा, राति अनेक हेलाणी, तू प्रभुंक नाम स्मरण करी सोई पड़।
0: हो मा, हो।

0: साल बेग तू मते निंदा भर्छना कले भी मु तोर पाखे पाखे अच्छी साल बेग तोर आराध्या जन्मदात्री माँ जे मोर परम भक्त मु अंतर्जमी मु अनाकार निराकार केही कण मते सहजरे पाई गर्व अहंकार आत्मबड़िमा को त्याग करी जी मोर शरणापन्न हुए सी मते निश्चय पाए मु परा भक्तर भगवान निष्ठारे अटल रहिले तू मध्य मोर दर्शन पाइबु साल बेग
1: के किए मत डाकिला तू तू तो सही गोपाल गोपाल ना हेले तू हाथ रे बंसी ललाटरे शिखी पुछ हा हा

0: गुरु बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर

0: करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: The Prime Minister said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhau Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said The project covers six

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।